ठाकुर के लोग बसेंगे तेई रहनी रहे सोई मेरा ओ साहेब मैं उसका तेरा रहत बिना न सिंह कहावे रहत बिना दर चोटा खावे रहत बिना

धन गुरु नानक पातशाह ने जो सारी सृष्टि दे दुख हरन लई संसार विच आए सन, अज इना देवां नूं भी देहां नूं भी देवत्यां दी नगरी बना दिता, धर्मशाला बनवाई। भाई दोनों टाइम सत्संग करया करो, भला करया करो, जीवां ते दया करया करो, तुहाडा भला होवेगा, तुहाडी नगरी सदा आबाद रहेगी। एडियां मेरा होर भी अनेकां ते कीतियां धन गुरु नानक पातशाह ने, जिथे भी मेर हो गई फिर कंगला पातशाह हो गया, जिथे भी चरण पा दिते ओ धरत पूजनीक हो गई, जिथे भी रेठे ते नदर पई ता अमृत हो गया। इसलिए जिथे मेहर तेरी।

गुरु बापे छिटके से भिटे गुरु बापे छिटके से भिटे गुर अंगद की ते कुआरे गुर तीजी पीढ़ी विचारिया क्या हठ के नाम विचारे।

हमारी जेबा एक ग्राम हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आना हर तुम बड अगम अथाह।

हमरी जेबा एक प्रभु जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कहिए तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कहिए जेबा एक तू समर्थ बड़ा मेरी मत छोड़ी ना मेरी मत छोड़ी हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी मत थोड़ी तू समर्थ बड़ा बड़ी हो बड़ा।

निर्मल निर्मल सूचा, निर्मल निर्मल सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, सुचो सूचा सुचो सूचा, अंत न अंता सदा बेअंता, कहो नानक ऊंचो ऊंचा, ऊंचो ऊंचा, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, ऊंचे ते ऊंचो जानी जय प्रभ ते उठान, तेरो थान, तेरा थान सुहावा रूप सुहावा, तेरे भक्त सोहे दरबारे, तेरा थान सुहावा, तेरा थान सुहावा, अर्थ सुहावी ताल सुहावा, विच अमृत जल छाया, तेरा थान सुहावा, हर जपे हर मंदिर साजिया, हर मंदिर साजिया, संत भगत गुण गावे राम, हर मंदिर साजिया, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, निर्वैर पुरख सतगुर प्रभु दाते, हम अपराधी तुम बख्शाते, जिस पापी को मिले ना कोई, जिस पापी को मिले ना कोई, शरण आवे दान निर्मल।

पहचाना अमरदास अंगद पहचाना अमरदास रामदास कहायो साधन लखा मूर नहीं पायो भिन्न भिन्न सब हो कर जाना एक रूप जिन हो पहचाना जिन जाना तिन ही सिद्ध पाई तिन समझे सिद्ध हाथ ना नानक अंगद को बप धरा धर्म प्रचुर।

देवना इसकी मस्त किसे घर आवे बैठा सोधी पातशाह रामदास सतगुरु जंतो मुन ध्यान धरे फिर सकल जग प्रभु को पावे आत्म प्रकाश को वेद बाणी सहत ब्रंच जस गावे जम को शिव मन गहना तजात कबिलाश को जम को जोगी जनी सिद्ध साधित अनेक तब जटाजूट पेख किए फिर उदास को सो तिन सतगुर सुख भाए।

गुरु साजी दवाजी साहब जी हो राग श्री राग तुहाडी सेवा विच पढ़न दी सेवा कर रहे हैं। श्री राग दा जो चलन है वो दो सुरां ते निर्धारित है, एक जिसनु असीं ऋषभ कहने आ सा तो बाद दूसरा स्वर रे है उसनु ऋषभ कहा जाता है, इसका प्रधान सुर है। और पंचम जिसनु पा कहने आ सारे गामा पा पंचवा सुर जो है वो इसका वजीर सुर है। इन्हां दोनों सुरां दे सुमेल दे नाल श्री राग दा जो स्वरूप कायम हुंदा है, जिस तरह

नक्षत्र वीणा का एक स्वर है दीन, बिरना जो है यह सितार का स्वर है, बिरना तिरना सितार वजदा और बीन जड़ा है वचित्र वीणा वजदा, यह साजा के दर्शन कराए ने।

रोग पवन गुरु पाणी पिता माता धर्म महत दिवस रात को दाई दया खेल धर्म अपो अपनी सारे जपो जिन्नी नाम गए मशक्कत नानक।

हमारी जेहबा एक ब्रह्म हर के गुण अगम अथाह हम क्यों कर जपे आनिया हर तुम बड अगम अथाह।

हमारी जेबा एक प्रभ जेबा एक अनेक गुण तरे नानक चरणी पाहे जेबा एक कमन गुण कही है तेरे गुण बहुते मैं एक न जाने कमन गुण कही है जेबा एक तू समरथ बजा मेरी मत थोड़ी रा मेरी मत थोड़ी हम अज्ञान अल्प मत थोड़ी मत थोड़ी तू समरथ बड़ा वड्डी हो।

साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज का पावन उपदेश जय देव नामा बिप सुदामा तिनको कृपा पई है अपार। साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज भगत जय देव का जिक्र करते हैं और ये पौड़ी भाई गुरदास जी की उच्चारण की प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन गावे। भगत जयदेव जेडे उस परमात्मा दी प्रेमा भगती करते हैं जिन्ना ने गीत गोबिंद ग्रंथ लिखे। भगत जयदेव की बाणी गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज विच दर्ज है। जदों भी आप गुरु ग्रंथ साहब जी नु मत्था टेकते हैं भगत जयदेव नु भी असी मत्था टेकते हैं। भगत जयदेव बंगाल दे विच पैदा हुए ए ब्राह्मण सन और भगत जी बारे भाई गुरदास जी अपनी पौड़ी विच बयान करते हैं। आज आप भगत जयदेव जी दे बारे विचार करांगे। आओ पहला इन पंक्तियां नूं सारे रल के पढ़िए। प्रेम भगत जय देव कर गीत गोबिंद सहज तुन गावै।

प्यास लगी पर लागे चागे कोई पिंड नहीं कोई पानी नहीं, गर्मी नाल बेसुर होके धरती ते डिग पे। ते साहब जी बाणी विच बयान करदे ने, भगत जना की हर जीव राखै तुर तू रखदा आया राम। वो भगतां दे नाल वसदा है, भगत डिगा ते कृष्ण जी महाराज एक ग्वाले दा रूप धार के ते कोल आए, हाथ विच दुध दा कड़वा है, भगत दे मुंह विच दुध पाया, होश आई ते भगत जी हैरान होके पुछदे ने, काका तू कौन है कित्थों आए, ये ते जंगल है ना, इत्थे कोई बंदा ना बंदे दी जात ना कोई घर। कृष्ण जी महाराज ने देखिया कि भगत होश विच आ चुका है, मेरा कार्य हो गया। कहन लगे ओ देख तेरे पिछले पासे साडा पिंड है, उत्थे मेरियां गावां चरदियां ने। ते भगत जी कहंदे ने, हुणे ही मैं इधर आया सां, उदू ते कुछ भी नहीं सी, अच्छा देखदा मुंह दूसरे पासे कीता, किथे तेरा घर किथे तेरियां गावां, हुण उधर कुछ भी नहीं सी। भगत जी कहन लगे, काका उधर ते कुछ भी नहीं, पर आवाज कोई ना आई। मुड़ के देखिया ते ओ लड़का जेड़ा दुध ला गड़वा लैके खड़ा सी ओ उत्थों अलोप हो चुका है। हुण मन वैराग नाल भर आया ते भरोसा होर बज गया कि मना जिदी याद विच मैं तुरे हां ओ मेरे तो दूर कोई नहीं। आखो सतनाम सिंह वाहिगुरु।

में संग हाथ जोर जोर कहूं, श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोर जोर कहूं, आपके वचन की प्रतीत कौन मानगो। श्री गुरु गोबिंद सिंह हाथ जोर जोर

बड़े पतवंते कवि जिन्होंने साहब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की पावन चरणा अंदर बिनय की सतगुरु जिन्हां गल्लां आप जी ने कहे हैं जितने वचन महाराज जी वो सब सच हुए ने पर गरीब नवाज सचे पातशाह आप समय नूं जानन हार हो समय दी ठीक समय अनुसार पहचान करन वाले सतगुरु जी आप जी ने कई दफा किया भाई पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना पंथ ते बड़ा बिखड़ा समा आउना पर पंथ दी अगवाई करन वाला साहिब गरीब नवाज गुरु गोबिंद सिंह महाराज आप तो बगैर कौन है। तो गरीब नवाज साहिब श्री गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह नूं कवि ने हाथ जोड़ जोड़ के बेनती की साहिब सचे पातशाह महाराज पंथ की राखो ताकि ग्रंथ की मानता रह जाए। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज जिन्हों अजे गुरता गद्दी नहीं सी बख्शी गरीब नवाज सचे पातशाह जी चरणा च जदों सिखां ने बेनती की महाराज पंथ की इज्जत पत आबरू आप जी ने बचाई है तो पंथ नूं कुछ ऐसे नियम दिओ जिस दे नाल इन्हां दी सारी रहिंदी दुनिया तक इन्हां दी रही जावे। ते साहिब गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज ने सिखां नूं एक वचन कहा सी श्री आनंदपुर साहब की धरती दे उपर बैठे हां कि पंथ जिन्ना चिर शब्द ते लड़ लगा रहेगा अकाल पुरख की पूजा विच लगा रहेगा उन्ना चिर एक कुराहे नहीं पै सकता जिन्हें अकाल पुरख की जदों इसने पूजा छड़ दिती ना ये भटक जाएगा कुराहे पै जाएगा। ते गरीब नवाज सचे पातशाह जी दियां ओ गल्लां अते बचन जड़े हैं श्री अबचल नगर हजूर साहब विखे गरीब नवाज सचे पातशाह ने भाई प्रहलाद ते भाई नंद लाल जी की समस्त पेश कीते गरीब नवाज सचे पातशाह महाराज उस समय का वातावरण जो रहतनामे अंदर लिखिया है गरीब नवाज वर्णन करते हैं।

पहला रूप साडा ए है जिहड़ा तिना गुणा तो परे है, रजो तमो सतो इन्हां तिना गुणों तो परे है। ये जिवें सारी बनस्पति दे अंदर अग है ना, किसे भी दरख्त नूं छांग के वेख लो, भावें ओ अंब दा होवे, भावें किक्कर दा होवे, भावें दरख्त निम दा है, भावें टाली दा है, अग सारिआं दे अंदर है। झट ही सारिआं नूं अग फड़ लैगी क्योंकि बनस्पति दे अंदर अग है। ते सारे दुद्धां नूं इकट्ठियां कर लो, भावें ओ घा दा दुद्ध होवे, ते भावें मझ दा होवे, गां दा होवे, बकरी दा होवे, किसे दा भी दुद्ध होवे, उस दे अंदर घिओ है। जिवें दुद्ध अंदर घिओ ते बनस्पति दे अंदर अग है। घट घट व्यापरिया परमात्मा वाहिगुरु सच्चे पातशाह जर्रे जर्रे अंदर जिहड़ा वसदा पिया, एक रूप साडा ओ है जिवें जल किसे घड़े दे अंदर पाया होवे। ते जल जल दा रूप है, जल दे अंदर भी परमात्मा वस रिहा है। पहला रूप साडा तिना गुणा तो परे है, कोई उस गुण नूं जान नहीं सकदा, कोई उस नूं वेख नहीं सकदा। वेखण अंदर ते बड़ा कुछ नजर आ रहा है पर अनुभव दी अख नाल कोई नहीं वेख सकदा, इस करके इस गुण दी पहचान होनी मुश्किल है क्योंकि इस दे विच कोई रूप नहीं। ए चक्कर चिहन अर वर्ण जात अर पात नहन, जे रूप रंग अर रेख देख को कह न सकत के। ए लंबा चल, इस रूप नूं अखां नाल वेख सकदे हो, अनुभव नहीं कर सकदे।

मैं तेनू एक होर बात कहना, जिन्ने अखर ने ए मेरे रोम हन, शरीर दे जितने रोम ने ना, साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह ने कहा गुरु ग्रंथ साहब विच आए हुए अखर ए मेरे रोम ने, ते जे एक भी अखर उरां परां हो जाए समझो मेरा रोम टुट जाएगा, समझो रोमां दी बेदबी हो जाएगी। ते गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी पढ़न लगे, असी विचार नहीं करते कितनियां लगा मात्रा अगे पिछे हो जांदियां ने, किन्नी नरादरी होंदी, कोई पवित्रता नहीं। मैले हथ जड़े हन गुरु ग्रंथ साहब के अंगा नू ला दिने, समझो गुरु गोबिंद सिंह महाराज सचे पातशाह जी के पवित्र चेहरे नू साडा मैला हथ लग गया। इस करके बड़ी पवित्रता दे नाल गुरु के सिखो, श्री गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू गुरु मानो। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज नू हाजिर गुरु मनोगे ते साहब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी दे दर्शन इसे विचों होणगे, दस पातशाहियां दे दर्शन होणगे। भाई नंद लाल जिन्हां लगा मात्रा ते अखर ने ए मेरे रोम ने बड़े पवित्र हिरदे नाल पढ़ने, बड़ी सोच विचार करके पढ़ने, किते अंगां दी बेदबी ना हो जाए, किते रोम जड़े हन टुट ना जान साहब सचे पातशाह महाराज दे। इस करके बड़े अदब नाल गुरु का सिख गुरु की बाणी पढ़े, गुरु ग्रंथ साहब नू मथा टेके हाजरा गुरु मने। अगले वचन साहब सचे पातशाह जी ने कहे।

0: रत्नवा बारू भीत बनाई रचपत रत्न ही दिन चार तैसे ही ए सुख माया के उज्जो कहां गवा
1: अजनु समझ रच बिगड़िया ना हनी अजहू

मनुख तू चेते कर माता के उदर में प्रतिपाल करे। सो क्यों मनो विशारिये, मनो क्यों विशारिये, एवड दाता जो अग्न में आहार पहुंचावे। ओ वेला याद कर शेर तले पांव ऊपरे वसंदो कोहतड़े थाए। नानक सो तनी क्यों विशारिये, उदरे जिसके दाए। ओ समा चेते कर जदों तू पुठा लटकिया होया सी ते कितनी माड़ी जगह ते कोहथड़े थां ते तू लटक रिया सैं, जिथों मल मूत्र लंघ रिया सी। उस वेले तू अरदास करदा सैं, हे निरंकार मैनू इस कुंभी नरक विचों कढ़, मैं तेरा सिवरन करांगा, तेरा नाम जपांगा। ओए तैनू क्यों भुल गया ओ वेला, तू कहा सी मैं अमृत वेले गुरबाणी गासा, सत संगत बह के हर नाम दिया सा, तू भूल गया वह दे। पै गए हनेरे ओए सुन मन गाफल, पल पल करके तेरा जीवन घटता जा रहा है।

अनेक सुख रस भोगन पूरे ग्रह सोहिन चंदन सुगंध ग्रह सोहिन चंदन सुगंध लाए मोती हीरे।

कुंवारी बन जा, खनिए बन जा, तो साहिब के नामी ऐ परमेश्वर मैं तेरे तुवारी, तेरे नाम तो कुर्बान जाना। तन गुरु नानक साहब जी बयान कर देगा, आओ अपनिया बिरतियां उस पास ले चलिए। गुरु नानक साहब के पिता मेहता कालू जी धन गुरु नानक साहब का राह पै तकते हैं। बेबे नानकी गुरु नानक साहब के वड्डे भैन जी आए अपने पिता मेहता कालू नूं मिले, नाल बेबे नानकी दे पति भाई अजय राम भी आए।

तानो गले लग के मिले तेनू गल ना लगाया ता माता तृप्ता जी एकदम रोना निकल गया ते नाले कहन लगे जीए हुण ते बड़ा चिर हो गया नानक नू देखे तू आई है कुछ भरोसा होया मन नू कि तेरा वीर मेरा सपुत्र गुरु नानक भी आवेगा। दूसरे पास भाई अजय राव अपनी सहुरा साहब मेहता कालू जी दे पैरां ते मत्था टेके मेहता जी ने प्यार दिता ते भाई अजय राम जी भी पुछदे ने पिता जी गुरु नानक साहब हाली नहीं आए असी ते इस आस्ते आए हां कि इस वरी जरूर महाराज जी दर्शन होणगे। भाई अजय राम रिश्ते दे विच गुरु नानक साहब दे भाईया लगदे ने जिन्हां नूं आपां जीजा भी कहने हां पर ओह रिश्तेदारी घट और गुरु नानक साहब दे सेवक ज्यादा ने। मेहता कालू जी कहन लगे जय राम तुसी आए हो मैनू भी भरोसा हो रहा है कि मेरा नानक जरूर आवेगा। कुछ समा बीते है भाई मनसुख भाई भगीरथ गुरु नानक नाल प्यार करन वाले ए भी आए ता बेबे नानकी जी दे दर्शन कीते इन्होंने हाथ जोड़ के आखे है बेबे जी गुरु नानक साहब आए ने ता बेबे नानक जी कहन लगे हाली आए ते नहीं पर जद बसंत रुत ने आना होवे ठंडी हवा पहला चलन लग पैंदी बहार ने आना होवे कुंजां दियां डारां पहला उड़न लग पैंदियां ने। जे गुरु नानक दे प्यारे आए ने ते गुरु नानक भी अज जरूर आवेगा। भाई अजय राव गुरु नानक साहब की याद विच जंगल वाल तुर पए एक दरख्त दे थले बैठे बड़े वैराग दे विच गुरु नानक साहब का उचारिया होया ए शब्द गाण लग पए अमली अमल ना अंबड़े मच्छी नीर ना होए जो रते सह अपने तिन भावे सब कोए। ऐ पातशाह जिस तरह अमली अमल नाल प्यार करदा अमल तो बगैर जी नहीं सकदा मच्छी पानी तो बगैर नहीं जी सकदी असि भी तेरे नाल इस तरह ही प्यार करने हैं तेरे बगैर असि भी जी नहीं सकते।

इधर माता तृप्ता जी अपने सपुत्र धन गुरु नानक साहब की याद विच मंजी ते लंबे पए। एक पासे मेहता कालू जी राह पए देखते और एक पासे भाई अजय राम जी और एक पासे राय पोए दी तलवंडी दा राजा राय बुलार और प्यारे उड़ीकते पए ने कि इस वरी जरूर गुरु नानक साहब की वरे गंढ गुरु नानक साहब की हजूरी विच मनावांगे। सूरज डुबण वाला हो गया है। मेहता कालू जी दरवाजे वाल निगाह टिका के बैठे हैं और बेबे नानकी जी छत ते खड़े होके राह पै थकदे ने। अचानक मेहता कालू जी खुशी नाल झूम उठे और आवाज मारदे ने, तृप्ता आओ देख मेरा नानक आ गया है। कहंदिया होया बुढ़ा बाबा कालू उठ के खड़े होए पर सचमुच सामने धन गुरु नानक साहब नाल सेवक मरदाना वेड़े विच दाखिल होए और आंदिया धन गुरु नानक साहब ने इस सद लाई सत करतार। इस सत करतार अंदर जिवें लह गया दिल की गहराई विच मेहता कालू जी खुशी नाल झूमदे होए अगे वधे। धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे कोल आए। गुरु होण दा मन विच गुमान नहीं अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकिया जिस गुरु नानक नूं दुनिया नमस्कारां करदी है ओ धन गुरु नानक साहब अपने पिता दे पैरां ते मत्था टेकदे ने ते पिता ने बाहां तों फड़ के अपने सपुत्र गुरु नानक साहब नूं गल दे नाल लाए कंड ते हाथ फेरे है अथरू नहीं रुकदे ते कहंदे ने बेटा अज मन नूं ठंड पै गई बड़ा समा हो गया तैनू उड़ीकदे हैं तैनू बड़ा मैं झिड़किया तैनू मैं एक बारी चपेड़ा भी मारी है पर बेटा बाद विच जाने है कि तू की है। अचानक ख्याल आया कहन लगे जा बेटा पहला अपनी मां नूं मिल। धन गुरु नानक साहब माता तृप्ता जी दे कोल आए मंजी ते कोल बैठे ते की देखते ने माता जी दी अखां बंद ने हाथां विच चोला है आपे कदे कहंदे ने बेटा नानक ऐ चोला पाला है आपे फिर कह उठदे ने लिया मां मैनू चोला पवा। ए वैराग देखिया ते धन गुरु नानक साहब अपनी माता दे हाथ फड़ के कहन लगे मां अखां खोल सचमुच मैं आ गया लिया मां मैनू चोला पवा। अखां खोलिया सपुत्र भी होवे फिर धन गुरु नानक साहब वर्ग कुट के छाती ना लाया अथरू किधे रुकन कहन लगे बेटा हर साल तेरे जन्मदिन ते चोला सी के रख दी है। साहब जी कहन लगे मां लिया फिर मैनू चोला पवा। पलो पली विच ए खबर सारे शहर विच फैल गई संगतां शहर दे वासी और ओ प्यारे जिहड़े कीर्तन विच जुड़े सन दर्शन करन वास्ते उमड़ पए ते बेबे नानकी जी हाल भी छत ते खड़े सन कि पहला माता पिता मिल लैण

माता तृप्ता जी, गुरु नानक साहब नु कहन लगे बेटा नानक जाओ हुण अपनी वड्डी भैण नु मिलो, बड़ी वैराग विच है तन गुरु नानक साहब माता नु मिल के बेबे नानकी जी नु मिलन वास्ते उठे ता बेबे नानकी छत तू थले उतरे भज के आए चरणा ते मथा टेकन वास्ते, पर गुरु नानक साहब ने बाहां फड़ लिया कहन लगे ना भैन तुसी वड्डे हो, भैणा भरावां दे पैरां ते मथा टेकन हे नहीं हो सकता। सत्संग ए इतिहास ए कथा कहानियां सुनाण दा एक मकसद है। ए कथा कहानियां बाणी तां सुनाई जांदी है तां कि साडे मना विच साडे हिरदे विच प्यार होवे। जे साडे हिरदे विच प्यार होवेगा साडे घर विच भी प्यार होवेगा। जिहदे हिरदे विच प्यार नहीं, जिहदे दिल विच प्यार नहीं, वो किसे नूं की प्यार देवेगा? चंगा इंसान बनन वास्ते चंगा पिता बनना जरूरी है, चंगा पति बनना जरूरी है, चंगा पुत्र बनना जरूरी है, चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी बनना जरूरी है। जिहड़ा चंगा पति ना बन सके है, चंगा पिता ना बन सके है, जिहड़ा चंगा पुत्र ना बन सके है, जिहड़ा चंगा भरा चंगा सज्जन मित्र चंगा शहरी ना बन सके है, सत संगत ओ चंगा इंसान कदी नहीं हो सकता। ओ ना सिख हो सकता है, ओ ना मुसलमान, ना हिंदू, ना ईसाई, वो किसे गिनती विच नहीं, क्योंकि परमेश्वर ने इंसान नु दुनिया विच भेजे है और इंसान विच अपना नूर अपनी जोत रखी। देखे आ इंसान दुनिया विच जा रहे हैं बंदगी कर सिमरन कर और दुनिया नु स्वर्ग बना सचखंड बना। ये कथा कहानियां सुननिया अपने महापुरुषां दे जीवन वाल देखना है। वो पति भी ने, पुत्र भी ने, वो भरा भी ने, वो सज्जन मित्र भी ने, वो गुरु भी ने, वो पीर भी ने, उन्होंने दुनिया नु प्यार वंडिया। ते आओ ये कथा कहानियां सुन के असि भी अपने मना विच प्यार रखी, साडे मन विच प्यार होवेगा, अपने घरदियां नु प्यार देंगे, लोकां नु प्यार देंगे, ते फिर स्वर्ग लभण दी लोड़ नहीं, ये दुनिया ही स्वर्ग बन जाएगी।

जैसे एक जननी के होत हैं अनेक सुत, सभी में अधिक प्यारो सुत गोद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत एक संपैना सुहेद को स्याने सुत बनज व्यवहार के विचार बिखे, गोद में अचेत हेत संपैना सुहेद को।

अंदर आ जा, अंदर आ जा, आ गया सच्चे पातशाह नु आगता चीज मैं वेख लई है, तक लई है, तेरा नंदलाल दिल कसीफ है, दिल गलीज है, दिल मेरा है, ये सुथरा नहीं है, साफ नहीं है, पाकीजा नहीं है, इसलिए इसनु पाकीजा कर, हाथ जोड़ के आखन लगा मेरे मालक अपने योग बना लो, जिदा का तुम्हें चाहिए बना लो, सतगुरु जी मैनु कोई तरकीब दस दो, सुझाव दे दो, सच्चे पातशाह कहन लगे मेरा खालसा बैठा ना, मेरा प्यारा खालसा, प्रभु का प्यारा खालसा बैठा ना, नंदलाल तुम्हें एक जुगत दसदा हां, लंगर विच चले जा, लंगर विच जाके मेरे खालसे दे जिन्ने वधिया बर्तन थाल गिलास कोले मन ला के साफ करेगा और जिन्ना वधिया करेगा उन्ना तेरा कासा है कलम जल्दी मुरबर हो जाएगा, दिल साफ हो जाएगा, बस इसने गल पल्ले बन ले, सीधा सीधा हूं सतगुरां दे लंगर विच चले गया, जानदिया इसने अपने बस्तरां दी कोई परवाह नहीं की थी, अपनी बुजुर्गी वाल ने तकिया ते बर्तन साफ करन लग पिया, कई दिन लंगर, कई दिहाड़े गुजर गए, कई दहाके गुजर गए, इस लंगर की सेवा कर दिया, साल गुजर गए, एक दिन एक व्यक्ति ने आके आख्या आगरे तू इतने नंदलाल होना कितने खालसा जी तुसी वेख्या ही नंदलाल, सिंह साहब तुहानू कितने पता ही नंदलाल का, आखन लगे गुरु ने एक फरमान कर दिता, हुक्म कर दिता, लंगर विच होवेगा जाके वेख लो, बुजुर्ग ने जाके वेखे ना तो लंगर विच बर्तन पिया साफ करे नंदलाल, गिट गिट उसते सुआह चढ़ी हुई, जूठा चढ़िया हुई खालसे दिया, पर गुरु का बचन उसने पल्ले बन लिया कि जिन्ने वधिया बर्तन साफ करांगा मन उन्ना वधिया साफ उजला हो जाएगा, इसलिए हुण ये गल घट करता है, बचन घट करता है, बर्तन ज्यादा साफ करता है। उस व्यक्ति ने मोढ़े हाथ ला के आखिया नंदलालो, नंदलालो, ये बोले ना, आखन लगे मैं पुछदा जी तुसी नंदलालो, बोलते नहीं, कहन लगा जिस दिन का मैं गुरु दर घर विच आ गया हां मैनू इस गल की सोझी पै गई है कि बहुता बोलन चखण होए बिन बोले जाने सब सो, इसलिए मैं बोलदा नंदलाल कोई ते गुफ्तू कर, कोई ते बचन कर, इसने पिछले मुंह करके उस बुजुर्ग आगरे को आए वाले कहन लगा हमें फुर्सत नहीं मिलती किसी से बात करने की, हमें फुर्सत नहीं मिलती किसी से बात करने की, ख्याल यार अपना हर वक्त मेहमान रहता है।

सुन ली तेरी गल, ये तो गुरु दर का कुत्ता बन गया, कुकर बन गया। कबीर जी ने शायद इसे लिए आख्या है, कबीर कुकर राम तो मुतिया मेरो नाम, गले हमारे जेवरी जे खिंचे पै जाओ। जिस वेले उसने अपने आप नू सग कहा, कुत्ता कहा, आखन लगा तो होर भी गल है, मेरे ते गुरु गोबिंद सिंह जी का निशान पै गया है, मैं दागया गया हां। नंद लाल उसे सुन ली तेरी गल, आखन लगा नाना कई कुत्ते मालक नू इन्ने प्यारे होंदे ने कि छेज ते चढ़ जांदे। ओ बाबा मैनू हाली ए अवसर प्राप्त नहीं होया, ए मौका नहीं मिले कि मैं गुरु गोबिंद सिंह जी दी छेज ते बैठ मां। नंद लाल आगरा ते बैंक पदार सन तेरे खान पीन वास्ते, इत्थे की मिलता है, इत्थे की मिलता है। ते नंद लाल ने बड़े सुरूर विच आके, बड़े वजद विच आके, बड़ी मस्ती विच आके

बड़ी परहेजगारी नाल और बड़ी सावधानी नाल लियांदा ना ते मालक पलंग ते बैठ के सुनु छकदे ने छकदे ने ते फिर तू की करना है आखन लगा जी मैं नींद ला के पल्ले बैठ जांदा हां उन्हां दे जोड़े विच बैठ जांदा हां मंजे दे पलंग दे कोल बैठ जांदा हां सतगुरु बड़ी तबीयत नाल शेर होके आगा के प्रशादा सकदे ने मैं सच्चे पातशाह दे मुखारविंद वल नूं वेंदा रहिंदा हां तकदा रहिंदा नींद ला तकदा ढिड भर के तकदा हां कि सतगुरु प्रशादा पै सकदे ने जदों छक के सेवादार जल लिआंदा है चूल्हा करन वास्ते त्रोली करन वास्ते ते सच्चे पातशाह चूल्हा करके पानी धरती ते सुटदे हन उस वेले उन्हां दे दंदा नूं लगे हुए रेजे भोरे धरती ते डिग पैंदे हन मैं पट के उठ पैंदा हां ए मेरी खुराक है मैं किसे होर नूं चुक्कण नहीं दिंदा खुराक सुन ली मैं वो रेजे धरती ते पए हुए बड़े इत्मीनान नाल बड़े प्यार नाल छकदा हां और तृप्त फिरदा हां अगा के रहिंदा हां हर वेले प्रसन्न हां ते ए मेरी खुराक है ए मैनूं बख्शिश ए मैनूं रहमत उदों होई है जदों मैं आख्या सी कि लै लो दिल ते मैं आख्या सी यक निगाहे जान फजाइश बस

कोई भी रतन की मुकाबला रख दे। कीर्तन वाहिगुरु परम पिता परमेश्वर दी सिद्ध सालाह उदी कीर्ति, भगवान दी उस्तत विच कहंदे ने नारद भगवान भी हर वेले वीणा हथ विच लेके उस्तत करदे होए कीर्तन ही करदे रहंदे सन। तो गुरु घर दे विच कीर्तन दी बड़ी महानता है। कीर्तन जो गुरसिखां दा आधार है, गुरसिखां दी जान है। गुरु नानक नाम लेवा गुरसिख, गुरु अते गुरु के कीर्तन तो बिना रह नहीं सकदा। ये जीवन है गुरु के सिख दा। कीर्तन सिमरन भी एक भगती है, सेवा भी एक भगती है। नौ भगतियां मनिया जांदियां ने, उना विच्चों एक भगती है कीर्तन भगती। तो गुरु रामदास पातशाह इस पावन शब्द विच कीर्तन दी महानता दर्शाउंदे होए कह रहे ने, मैनू मेरे सतगुरु ने वाहिगुरु दा नाम हरि नाम दस्या है, ते मैं उस कीर्ति दे विच ही हर वेले लीन रहिंदा। और ए भागां नाल प्राप्त हुंदा है, जिन्हां दे चंगे भाग

चित तुम्हें अरादा। हे वाहिगुरु, मैनू ऐसी मत दे कि मैं दिन रात तेरा नाम जपा सतना। साध संगत तुसी भी जपो श्री वाह। नाम दा कितना फल है, गुरमुख नाम जपो मन मेरे। आखिया नाम जपेगा मिलेगा की। गुरु अर्जन देव सच्चे पातशाह अपनी बाणी विच फरमान करदे हन, गुरमुख नाम जपो मन मेरे, नानक पावो सुख कनेरे। सुखां नूं लभदा, सुखां दी खातर की कुछ करदा फिरदा, पर पता सुख मिलदा किवें है और किसनूं मिलदा है। आखिया जो कोई जपदा सतनाम। पर शर्त है अपने आप नूं मिटा दे, मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए, कुछ बनना चाहना, मालक दे दर तों खुशी लेना चाहना, गुरु नानक दी कृपा दा पात्र बनना चाहना, तो मिटा दे अपनी हस्ती को। अगर कुछ मर्तबा चाहिए कि दाना खाक में मिलकर, जिन्ना चिर दाना मिट्टी विच नहीं मिलदा उगदा नहीं, कुछ फल नहीं मिलदा। इसे तरह हजूर कलगीधर सचे पातशाह ने नंद लाल दी होमे खिंच लई, अंदर तू दा निवास कर दिता। हुण जिधर भी नंद लाल वेखदा है, हुण कलगी वाला ही नजर आउंदा। इधर भाई नंद लाल ते कृपा होई, ते उधर गुरु नानक सचे पातशाह दा ओ सिख राजा सुगड़ सैन हुण राज विच रहिंदिआं होइआं वी, राज भाग दे सुख माणदिआं होइआं वी, अंदर हर वेले इको ही गल फिरदी है, इको ही बचन करदा है। राज भाग अपना नहीं समझदा कि

संत सदन जो जन पर सो जने उतर नहारे संत की निंदा नानका बहुर बहुरे अवतार अष्टपदी संत के दुखन आ जा कटाए संत के दुखन जमते नहीं छुटाए संत के दुखन सुख सब जाए संत के दुखन नरक में पाए संत के दुखन मत होई मलीन संत के दुखन शोभा तेहीन संत के हते को रखे न कोए संत के दुखन थान भ्रष्ट होए संत कृपाल कृपा जे करे नानक संत संग निंदक भीतर है संत के दुखन ते मुख पवे संतन के दुखन काग जो लवे संतन के दुखन सर्प जोन पाए संत के दुखन त्रिगत जोन किरमाए संतन के दुखन तृष्णा में जलाए संत के दुखन सब को छलाए संत के दुखन तेज सब जाए संत के दुखन नीच निचाए संत दुखी का थोको ना है नानक संत पावे ता ओए पी गत पाए संत का निंदक महत ताई संत का निंदक खिन टिकन न पाई संत का निंदक महा हत्यारा संत का निंदक परमेश्वर मारा संत का निंदक राज तेहीन संत का निंदक दुखिया अर्दीन संत के निंदक को सर्व रोग संत के निंदक को सदा विजोग संत की निंदा दोख मैं दोख नानक संत पावे ता उसका भी होए मोख संत का दुखी सदा पवित संत का दुखी किसे का नहीं मित संत के दुखी को दान लागे संत के दुखी को सब त्याग है संत का दुखी महंकारी संत का दुखी सदा विकारी संत का दुखी जन्म मरे संत की दुख ना सुख तेतर है संत के दुखी को ना ही ठाओ नानक संत पावे ता लय मिलाए संत का दुखी अदबीज से टूटे संत का दुखी किते काज न पहुंचे संत के दुखी को ध्यान फरमाइए संत का दुखी उजड़ पाइए संत का दुखी अंतर ते थोथा जो सांस बिना मृतक की लोथा संत के दुखी की जड़ किछ नाहे आपन बीज आपे ही खाए संत के दुखी को अब न राख नहार नानक संत पावे ता लय उबार संत का दुखी ए बिल लाए जो जल बिहून मछली तड़फराए संत का दुखी भूखा नहीं राजे जीव पावक ई तन नहीं त्रापे संत का दुखी छुटाए अकेला जीव बुआड़ तिल खेत माहे दुहेला संत का दुखी तनम ते रहत संत का दुखी सद मिथ्या कहत किरत निंदक का तुही पया नानक ज्योतिष पावे सोई थिया संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए संत के दुखी को दरगह मिले सजाए संत का दुखी सदा सहकाइए संत का दुखी ना मरे ना जीवाइए संत के दुखी की पूजे न आसा संत का दुखी उठ चले निराशा संत के दुख न तिस्टै कोए जैसा पावे तैसा कोई होए पया कितने मेटे कोए नानक जाने सच्चा सोए सब कर तिसके ओ करने हार सदा सदा तिसको नमस्कार प्रभु की उस्तत करो दिन रात तिसे ते आवो सास गिरास सब कुछ वर्त है तिसका किया जैसा करे तैसा कोथिया अपना खेल आप करने हार दूसर कौन कहे विचार जिसनों कृपा करे।

मन मैं ना गुरमत, गुरमत मैं ना मन, नेचल होए ना उन मन लिवलाइए, अंग अंग भंग रंग रूप।

महाराज की आखो सतनहा। वैसे पांच चाबियां दिंदा जी, पांच चाबियां दिंदा जी, केड़ियां? ओदी रसना ते चाबी दे दिंदा सत दी, आखो सतनहाम। जो कहिंदा है वो सत होना शुरू हो जाता है। प्रभु जी बसे

साध के संग सोबा सुर देवा बाणी कह रही है कहंदे रंगियां दा संग ते किते इतरां दा भी भुलेखा पै जे ओ धर्मराज भी सेवा करदा है को सतनाम इशारा लेना अंतरयाम दा हिरदे नूं कुंजी मिल जांदी अंतरयाम दा सस्ता सत्कार ना करना आ रही कुदरती बाबा कुंदन सिंह जी दा भी बरसी दा दिन लंघ के गया तुहाडे अमृतसर दे जेड़े हरमंदर साहब सवैये पढ़ते अखीरला सवैया जेड़ा पढ़ते भाई अवतार सिंह जी हम अवगुण परे गुण नहीं टैलीविजन सुनते इन्हों का परिवार गया नानक सर बाबा कुंदन सिंह जी को बाबा जी चोला बदल गए ओदे तो पहला बचन है जदों कमरे च गए जी भुगते ते बाबा